यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 मई 2026। इस समय सवेरे के 8:56 हो रहे हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सभा के आरंभ में आज का शुभ विचार।

मैं उन लोगों में से एक हूँ जो नोबेल की तरह सोचते हैं कि मानवता नई खोजों से बुराई की तुलना में अधिक अच्छाई प्राप्त करेगी। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ के लिए प्रतिभाशाली हैं और ये चीज़ चाहे किसी भी कीमत पर हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। मैडम क्यूरी।

FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम कर रहे हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चार जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी

0: करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के 3rd सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अभी तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा

0: याद किया जाएगा।
1: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई ये कायत है, बेबू आंखें हैं पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनवाने हमारे मुंबई केंद्र।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो

और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा, जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो है आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया। जगत

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

68 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: फिल्म मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जिद लेला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते, शेखू बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

दोनों पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 102.9 MHz पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम गांधी चिंतन का।

शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो सामने से सरल मगर विचारों से बौद्धिक थे। उनकी वेशभूषा के साथ खाना भी काफी साधारण हुआ करता था। उनका मानना था कि भोजन सरल होना चाहिए, ये भूख को संतुष्ट करने का साधन नहीं था। इसके बजाय उन्होंने भोजन को एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जो मानव चेतना को आकार देता है। उनका कहना था कि जितना सादा खाना इंसान खाता है उतने ही उच्च विचार सामने आते हैं। उनकी इस शैली का पूरी दुनिया लोहा मानती है। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से एक बार स्कूल में पूछा गया था कि वो ऐसी किस शख्सियत के साथ भोजन करना पसंद करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि वो महात्मा गांधी के संग भोजन करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो उनकी क्षमता का आकलन करना चाहेंगे कि किस तरह सरल भोजन के दम पर वे अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रहे थे।

अभी आप मीरा चैनल से प्रसारित गांधी चिंतन सुन रहे थे, विषय था खान पान। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

काजल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले का स्वर था। साहिर ने गीत को लिखा था और रवि ने संगीत से संवारा था।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे दहशत फिल्म से, इसे हमने लिया था। गीत लिखे थे अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिरी ने संगीत से संवारा था।

आइए सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से संवारा है, लता मंगेशकर, SB बाल सुब्रमण्यम ने गाया है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: एफएम मीरा चैनल से प्रसारित आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। आशा भोसले शब्बीर कुमार के युगल स्वर हैं। अनजान ने लिखा है गीत को, अनु मलिक ने संगीत दिया है। एक जान है हम फिल्म का नाम है।
1: I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो?

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, बड़े दिल वाला, फिल्म से इसे हमने लिया था। फिल्म संगीत का आखिरी गीत डार्लिन डार्लिंग फिल्म से इसे हमने चूज़ किया है। किशोर कुमार आशा भोसले के युगल स्वर हैं, आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: मोटी हो जाओगी।
1: मोटी?
0: हम मॉडर्न लोग नहीं खाते हैं, हम करते हैं चाय ठीक।
1: किशोर कुमार आशा भोंसले के युगल स्वरों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डार्लिंग डार्लिंग। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.9 MHz पर सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

मैं ऐसा क्या कह सकती हूँ जो मैंने पहले नहीं कहा होगा? तो दोबारा कहती हूँ, हर पत्ते में एक गीत होता है, पत्थर का चेहरा सहनशील होता है, नदी में होती है अंतहीन एक कहानी। कभी कभी मैं ऊब जाती हूँ, दिनों से, महीनों से, सालों से। मैं चढ़ना चाहती हूँ धीमे धीमे किसी बूढ़े दूसर पर्वत पर। जी हाँ,

सकता है सखियों ये शब्द निराशा भरे हों। 102.9 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूँ रजनी, नमस्कार। कार्यक्रम है महिला जगत। सखियों, निराशा से उपजी आशा। अभी कल ही मैंने एक चींटी को रास्ता पार करते हुए देखा। मैं बैठी थी, विचार कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रें उस चींटी पर टिकी हुई थी। नीचे गिरे चीड़ के पत्तों में से राह बनाते हुए निकल रही थी, सब चीज़ों से होकर गुजर रही थी, जब तक वह अपनी मंजिल तक ना पहुंची। बस उस दिन मैंने जान लिया आखिर मुझे करना क्या है। बस निकल पड़ी। आसपास की आवाज़ें दे रही थी बिन मांगे सलाहें। बेड़ियाँ थी जो छूट ही नहीं रही थी पाँव में से और खींचे जा रही थी मुझे। गहरी उदासी में डूबी बेड़ियों को तोड़कर कदम आगे बढ़ते चले गए मेरे। बस आवाज़ें पीछे छूट गई। बादलों की चादर के पीछे तारे फिर चमक उठे। चलने लगी मेरे साथ नई आवाज़ें। लंबे कदम भरती हुई दूर और दूर चलती गई, ठाने हुए मन से वह काम करने जिस पर मेरा बस था, बस एक जीवन का उद्धार। सखियों, निराशा हमें सोचने पर मजबूर करती है, गहन चिंतन को कहती है, और वहीं से एक नई आशा का जीवन संचार होता है। इसलिए निराशा आए तो हताश नहीं बल्कि मंथन करना, आशा उम्मीद के द्वार खुलने लगेंगे, तुम फिर हंसोगी, सबकी प्रेरणा बनोगी। इसलिए कहते हैं जियो जिंदगी जिंदा दिली से।

जहाँ सखियों ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत होती है, हम निराशा की तरफ ना जाके, नेगेटिव सोच या नेगेटिव लोगों की तरफ नहीं जाकर पॉजिटिव दुनिया की तरफ मुड़ जाएंगे तो अपनी दुनिया और खूबसूरत हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे महिला जगत सेगमेंट के महिला विशेष की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बड़ोदेकर का जन्म 29 मई सन 1905 को महाराष्ट्र के मिरज शहर में हुआ था। आज इनकी जन्मतिथि है, करते हैं इनको वंदन और जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सखियों, किराना घराने से ताल्लुक़ रखने वाली हीराबाई को संगीत की दुनिया में गान हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में टिकट वाले संगीत कार्यक्रम करने वाली पहली भारतीय महिला कलाकार थी। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इन्होंने ही लाल किले पर वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। सखियों इन्हें 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हीराबाई ने स्वर्ण मंदिर, प्रतिभा, जनाबाई सहित कई फिल्मों में अभिनय भी किया। बच्चों को संगीत सिखाने के लिए संगीत विद्यालय की शुरुआत भी इन्होंने की। सरोजिनी नायडू ने इन्हें गान कोकिला भारत की बुलबुल की उपाधि से नवाजा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

एफएम मीरा चैनल से प्रसारित आप सुन रही महिला जगत में हूँ आपके साथ आपकी सखी रजनी। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं दिखावे की। जी हाँ, दिखावे की। दिखावे की सजावट स्थायी नहीं होती है सखियों। सच्ची सफलता और सुकून हमेशा सादगी, ईमानदारी और असलियत में ही पनपते हैं सखियों। दिखावे और झूठी चमक दमक से बनी जिंदगी कभी भी स्टार, सच्ची चमक या बुलंदी नहीं बन सकती। सोशल मीडिया या दिखावे की दुनिया में अक्सर लोग अपनी हकीकत छुपाकर एक मुखौटा पहन लेते हैं सखियों, जिसकी नींव झूठ पर टिकी होती है। दिखावे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना सखियों, उसका 10% भी अगर खुद के विकास में लगाया जाए तो वास्तविक चमक हासिल की जा सकती है। झूठी छवि बनाए रखने के चक्कर में इंसान हमेशा एक दबाव में रहता है और अपने वास्तविक स्वभाव को खो देता है। दिखावे से मिलने वाली तारीफें या फॉलोवर्स हमेशा थोड़े समय के लिए होते हैं सखियों, या आपको रियल लाइफ में स्टार नहीं बनाते। सोसाइटी में दिखावा करने के चक्कर में अक्सर कर्जदार बन जाते हैं, जहां एक कर्ज आपको धीरे धीरे बड़े कर्ज के बोझ में दबा देता है। जितना है उसमें सब्र करना भी एक कला है, जो आपको जिंदगी का मूल्य और रिश्तों की सत्यता को दिखाता है। सखियों, आप जो हैं वही रहें। एक सूती वस्त्र साफ धुला पहना हुआ इंसान उन 100 दिखावटी कर्जदारों से, कर्ज में डूबे हुए इंसानों से बेहतर खुश मिजाज होता है, जो संतुष्ट होता है और सभी को पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप भी ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जिनकी दुनिया झूठी दिखावों से बनी हुई है, जहाँ सब कुछ है मगर सच्चा साथ, सुख, हंसी नहीं है। ऐसी महफिलों में, ऐसे आयोजनों में भी जाने से आप परहेज करें, जहाँ सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, सच्चाई या प्रेम नहीं है। तो दिखावे से दूर रहकर एक रियल लाइफ के अंदर लौट आइए।

सखी चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करनी है। जी हाँ, अभी चल रहा है नौ तपा से लोग काफ़ी डरते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सखियों। सूर्यदेव की तपिश के 9 दिन का यह समय होता है नौ तपा। इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, डरने की नहीं। चलिए जानते हैं नौ तपा है क्या। सखियों, नौ तपा वह 9 दिन होते हैं जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। यह समय वर्ष का सबसे गर्म समय होता है। इस दौरान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ने के कारण सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, गर्म हवाएं चलती है, पानी की कमी, लू का खतरा बढ़ता है। सखियों, नौ तपा में रखें सावधानियां। अब क्या क्या सावधानियां रखनी है ये हम आपको बता देते हैं। पर्याप्त पानी पीते रहें, दिन में 5 से 10 ग्लास पानी पिएं, धूप से बचें, दोपहर 12 से 5 बजे तक घर से बाहर निकलने से आप बचें, हल्के ढीले कपड़े पहनें, सूती कपड़े पहनें और सिर ढक कर रखें, छाता, टोपी या सूती कपड़े का उपयोग करें। धूप से बचने के उपाय होते हैं ये। सखियों, अच्छे ब्रांड का सनग्लास का प्रयोग भी आप कर सकती हैं, आँखों को तेज धूप से बचाएं। सखियों, भारी व्यायाम करने से बचें, इस समय शरीर को आराम दें। सत्तू का सेवन करें, शरीर को ठंडक देता है, एनर्जी बनाए रखता है। नारियल पानी पीती रहें, ये शरीर को हाइड्रेट रखता है। खीरा, टमाटर, तरबूज, खरबूजा खाएं, ताज़ा खाना चाहिए, ठंडा या बासी या ये इन फ्रूट्स को ना खाएं, अवॉइड करें। रसीले फलों का सेवन करें, बहुत तीखा, तला भुना चाय, कॉफ़ी, कैफीन, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन तो आप बिल्कुल भी ना करें। सखियों, हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं, जैसे तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी, अचानक से पसीना आ जाना, तो आप देरी ना करें, तुरंत जो भी व्यक्ति है उसको ठंडी जगह पर ले जाएं, और हो सके तो आप उसे कुछ

नमक या थोड़ा नमक और शक्कर का घोल पिलाकर हल्का सा पानी उसे ज़रूर पिलाएं, या ये रख या आप अपने पास ऐसा कोई लिक्विड फोम रखें जो थोड़ा मीठा हो थोड़ा नमकीन हो, वो ज़रूर आप पिला सकती हैं। और हाँ, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और बुज़ुर्गों और बच्चों का तो विशेष आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखें, स्वस्थ रहें, नौतपा के इस समय को सुरक्षित रूप से आप पार कर जाएंगी सखियों।

सखियों, चलते चलते आपको हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में बता देते हैं, आप गर्मी में कम से कम निकले और हो सके तो आप नींबू और हरे पुदीने का सेवन ज़्यादा करें, चाहे वो केरी के पानी में करें चाहे आप नींबू के पानी में करें, उसको अच्छा पीस कर रख लें और कांच की बोतल में रखें। जब भी आपको नींबू पानी बनाएं या फिर आप केरी का पानी बनाएं, या हो सकता है छाछ में भी काफ़ी लोग इसे लेना पसंद करते हैं, तो अच्छा है भुना हुआ जीरा, अजवाइन ये और काला नमक मिलाकर आप भी पीजिए और लगातार पीजिए, ताकि डिहाइड्रेशन होगा नहीं, शरीर में पानी और नमक और इसकी कमी होगी नहीं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और चलते चलते आपकी सखी रजनी आपसे यही कहना चाहेगी कि आपका हर विचार सच के बेहद करीब होता है, संभावनाएं और चमत्कार एक ही है सखियों, खुद से प्रेम करें, खुद को अपने प्रेम का हकदार माने, अपनी खुशी को महसूस करें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय।

FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं हमारे मुंबई केंद्र से।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनके जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी

0: अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सी

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 102.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप

0: पी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदित सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफ एम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनवाने हमारे मुंबई केंद्र।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री

0: हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशी की फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 102.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, दिन का एक बजने वाला है, थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
2: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं, राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
1: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया।

0: गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत एक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह

0: कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीता

0: पुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सब इसका पीछे जा, हाँ, और सब इस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालुबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालुबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं।

0: उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
1: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर वन और यह नंबर टू।
1: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
2: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
3: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका।

0: रहा था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप मीरा चैनल से प्रसारित NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर।

0: पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

Akashvani at 90. आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ 102.9 FM मीरा चैनल के प्रसारणों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, फिर जाइए लाइव रेडियो पर। रेडियो के बहुत सारे चैनल, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए अपना पसंदीदा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ चैनल को और फिर मस्जिद सुनिए हमारे पंचरंगी प्रसारणों को कहीं भी कभी भी।

0: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनवाने हमारे मुंबई केंद्र
1: मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुंच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी।

चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेम्पल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहां पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहां पर मिलते हैं और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहां छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

0: फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 102.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात 2:15 पर होंगे हिंदी में समाचार।

0: माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं, मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में

ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है।
दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की

0: सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनवाने हमारे मुंबई केंद्र।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से एक गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूं ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा भूपे, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं मेरे पसंद का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े से मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता। स्पर्श करने के बाद ही
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी

0: 8 साल की है।
1: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।
0: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती। अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपनी हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की चली गई।
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है ना
1: मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते मैडम, घर के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?

0: जी मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: ओ, हस्बैंड।
0: अच्छा मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो अच्छा। उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है।
0: अच्छा।
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी फैमिली ही रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से ये बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी,
0: था
1: जी। मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी।
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
0: जी,
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से
0: जी,
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02224062 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240002462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में

दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण और कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था? शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने

ये आवाज थी महेंद्र कपूर की और फिल्म थी निकाह। यादों की इस कसक के बीच चलिए हवाओं में थोड़ी खुशबू घोलते हैं। फिल्म बदलते रिश्ते से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया यह खूबसूरत गीत।

अभी आप लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की सुरीली आवाजों में यह गीत सुन रहे थे। जब सांसें महकने लगे तो दिल बस एक ही सवाल पूछता है, फिल्म रॉकी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का यह रोमांटिक ट्रैक, क्या यही प्यार है।

फिल्म रोकी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सुने इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: No one has ever achieved success by making excuse and no one ever will. बहानेबाजी से आज तक किसी को भी सफलता न मिली है और न मिलेगी। साथियों, रेडियो की टाइम मशीन पर वक्त हुआ जाता है 5:23। साल के 365 दिनों में खत्म होता दिन शुमार 149। आवाज़ आप सुन रहे हैं रिजवाना परवीन शेख की। साथियों, इस सफ़र को और भी हसीन बनाने के लिए दीजिए मेरा साथ और बन जाइए हम सफ़र इस कार्यक्रम के, जिसका नाम है युववाणी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से ठीक पहले इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिक उपयोग हमारी नींद और स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। मोबाइल और स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है। इससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है और हमें देर तक नींद नहीं आती। कई बार लोग रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस होने लगती है। दोस्तों, केवल नींद ही नहीं, देर रात तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, तनाव और

माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। मोबाइल को सिरहाने रखने के बजाय थोड़ी दूरी पर रखें। रात में डार्क मोड या नाइट मोड का उपयोग करें। साथ ही सोने से पहले शांत संगीत, किताब पढ़ना या हल्की सी बातचीत जैसी आदतें अपनाएं। कोशिश करें कि बेडरूम को केवल आराम और नींद के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही अच्छी नींद हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, दिमाग को तरोताज़ा रखती है और पूरे दिन काम करने के लिए शक्ति भी देती है। इसलिए तकनीक का उपयोग ज़रूरी है, लेकिन सही समय और सीमित मात्रा में। याद रखिए, रात की अच्छी नींद अगले दिन की अच्छी शुरुआत होती है। साथियों, अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। इसलिए डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लें और अपनी नींद को महत्व दें।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: साथियों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनकी मधुर धुन सीधे दिल को छू जाती है। उन्हीं में से एक है शहनाई। भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में शहनाई का एक विशेष स्थान है। इसकी मधुर और शुभ ध्वनि भारतीय संस्कृति और समारोहों की पहचान मानी जाती है। शहनाई लकड़ी से बना एक फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसके ऊपरी भाग में कई छेद होते हैं जिन पर उंगलियां रखकर अलग अलग सुर निकाले जाते हैं। वहीं इसका निचला हिस्सा धातु का फैला हुआ होता है जिससे इसकी आवाज़ दूर तक गूंजती है। दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके संगीत ने इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए जब भी बात शहनाई की होती है तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान का नाम जरूर लिया जाता है। साथियों, भारत में शादी विवाह, मंदिरों और मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पहले के समय में गांवों और राज दरबारों में भी शहनाई की धुन विशेष अवसरों पर सुनाई देती थी। जब भी किसी शुभ अवसर की शुरुआत होती है तो कानों में सबसे पहले जो मधुर धुन गूंजती है वह होती है शहनाई की। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी आवाज़ भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है, जो हर खुशी के मौके को खास बना देती है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों, दुनिया में शांति बनाए रखना जितना आसान सुनाई देता है उतना ही कठिन काम है। कई बार देशों के बीच संघर्ष, युद्ध और हिंसा ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगती है। ऐसे समय में कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शांति कायम करने के लिए आगे आते हैं। इन्हीं बहादुर लोगों के सम्मान में हर साल 29 मई यानी आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत उन शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए की जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने के दौरान अपना योगदान दिया। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिक केवल युद्ध रोकने का काम नहीं करते बल्कि वे लोगों को सुरक्षा देना, बच्चों और महिलाओं की मदद करना, राहत सामग्री पहुंचाना

और संघर्ष वाले क्षेत्रों में विश्वास बहाल करने का भी काम करते हैं। सत्यो भारत भी इस मिशन में हमेशा आगे रहा है। भारतीय सैनिकों ने कई देशों में जाकर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारतीय शांति सैनिकों का सम्मान किया जाता है। दोस्तों, आज का दिन हमें यह संदेश देता है कि शांति केवल युद्ध का न होना नहीं, बल्कि इंसानियत, सहयोग और विश्वास का होना है। दोस्तों, अगर दुनिया में शांति होगी तो ही विकास संभव होगा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपना लेना चाहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आज हम याद कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे हितेशी और सादगी की मिसाल चौधरी चरण सिंह को, जिनकी पुण्यतिथि हमें उनके संघर्ष और योगदान की याद दिलाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत की आवाज को मजबूत करने में लगा दिया। वे मानते थे कि भारत की असली ताकत गांवों और खेतों में बसती है। राजनीति में रहते हुए उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। उनकी सोच थी कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, आज के युवाओं के लिए चौधरी चरण सिंह का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और समाज सेवा ही सच्ची सफलता का रास्ता है। साथियों, आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश, अपने किसानों और अपनी मिट्टी का सम्मान करेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन।

साथियों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप और लू लेकर आता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ सकती है, इसलिए गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है। घर से बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें, खूब पानी पिएं और हल्का भोजन करें। साथियों, कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर न निकलें। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। थोड़ी सी सतर्कता आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकती है। धूप है तेज पर बचाव है आसान। पानी पिएं, सुरक्षित रहें और गर्मी को कहें अलविदा।

इस भागती हुई जिंदगी में तुम सुकून के कुछ पल जैसे हो। साथियों, इन सुकून के पलों को यहीं कहते हैं अलविदा। तो आपसे अगली मुलाकात करेंगे हम युववाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम सुनिए मेरा भजन सुमन यादव के स्वर में।

श्रोताओं, ये आवाज थी सुमन यादव की। अब सुनिए चंचल काबरा की आवाज में यह प्यारा सा लोकगीत।

चंचल काबरा की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। लीजिए अब सुनते हैं एक खूबसूरत गजल आशा भोसले की आवाज में।

आशा भोसले के स्वर में सुनी इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए अप्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित दैनिक कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या है 202, गायक कलाकार है ए हरिहरन और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

तीर्थराज प्रयाग में भरतवाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरतवाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग संख्या 202। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए जानते हैं सभा में शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। सर्वप्रथम जानकारी हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार। अब जानकारी हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 6:27 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। अब जानकारी हमारे मीरा चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी। फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 बजे और 8 बजे सुने कार्यक्रम लोक संगीत। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर। तो ये थी जानकारी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 6:27 हुए हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: भाई जल्दी सी खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
1: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
0: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
1: फिर भी लल्लू के बाबू खाना खाने से पहले हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
0: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब ये सब बता रहे थे और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: देखिए सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रही है। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
7: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम की 6:30, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश

0: लेने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों जीवन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक

0: तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदड़ में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाना पंचायत समिति में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है।

0: आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावण संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावण का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावण राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावण प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुँच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूर दराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग फंड से एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण जल की देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत मिशन तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश के सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित रखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हालताई देश रा 40 लाख घरां रे छत माथे सूरज री रोशनी उन बिजली बनावन री मशीन लगाई जी। प्रदेश में सत्यापन नहीं करा सके पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन में सत्यापन

0: करायो चा वेला अर राज्य रा कुछ हल्का माय आंधी बारिश हूं लू अर तपन हूं थोड़ो आराम मिलियो आज अर काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश अर ओला पड़बा सारू चेताईचियो समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राख्योड़ा फैसला तीन महीना री मियाद माय सुनावन रा हुकम दिना है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादी जुड़िया मामला माय तुरंत फैसला री जरूरत माथे जोर दिनो पीठ कहो के जमानत री अर्जियां माथे हुकम वही दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया जाना चाहिए अदालत कहो के जमानत या सजा निलंबन रो हुकम सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है पीठ कहो के विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलता ही वही दिन या आवता दिन जेल नु छोड़ दियो जाउनो चाहिए सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला माय दायर अर्जियां माथे आज ही सुनवाई कीनी न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो के ई मामला माय चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए आ अर्जियां माय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उज बनावन या वन हटावन रो हुकम देवन अरवाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावन री मांग करी ची ही ई मामला माय अगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह माय करी जावेला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेज माय दाखिला सारू उजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीकाओं बिना गलती करावन रो भरोसो दिरायो है दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो के सरकार पीछे इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगड़ा जतन कराया जा रहा है
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है जो रक्षक था वही भक्षक हुआ जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर
0: री
1: एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश माए हालताई 40 लाख मकाना रे छत माथे सूरज री रोशनी उ बिजली बनावन री मशीन लगाती रीची है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी व कहो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक रे बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला प्रदेश हुई राज्यसभा रा 3 सदस्यां रो चुनाव करयो जावणो है इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सकेला चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करी जिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला जरूरत पड़िया 18 जून ने सवारे 9 सिंजा 4 बजे ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजे वोटां री गिनती करी जावेला मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माय पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माय कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर रो सुन रिया हो प्रदेश माय पेंशन लेवन वाला ज्यां लोगां रो हाल ताई सत्यापन नी करायो जा सक्यो है मारो आवता 15 दिन माय सत्यापन करायो जावेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माय न्यारी न्यारी योजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माय ए हुकम दीना वे कहो के राज्य माय करीब 89 लाख लोगां ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जहां मायों 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए रेटिमा

0: आज अजमेर नीमराना हलका माए कुछ थोड़ा छापा मारिया। एनआईए री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच की नी और जरूरी पूछताछ करी ची। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन ही कीनो। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधीचिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति में पीपल पूजन करीचियो और महिलावां मंगल गीता सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनु है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए सीएसआर कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रबारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन री शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ई बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवन सागे बीका माई कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी गति की जा सकती है। बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वहां वीडियो ने गलत बतायो है जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारे में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने एआई बनाई चियो है। पीआईबी री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज में हिंदी ने

0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम संभाला सगले किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना आराम राम। किसान भाइया देखो, ये टाइम गर्मी खूब पड़ रही है और गर्मी में देखो अपन काम करना है खेती बाड़ी का, बगीचा लगावा का। तो आज अपन बात करना किसान भाई कि बगीचा लगावा के लिए अपन गड्ढा की जो तैयारी है वह की तरीकों करनी है। तो किसान भाई, बगीचा लगावा के लिए गड्ढा की खुदाई हमेशा पौधे की प्रजाति और आकार ने ध्यान में रखते तक अपन ने करनी चाहे और सामान्यतः 1-1.5 फीट चौड़ो और गहरो गड्ढो आदर्श गड्ढो मान्यो जावे है बगीचा के लिए। तो अपना इलाका के अनुसार सही और टिकाऊ बगीचों लगावा के लिए स्थानीय मिट्टी की जांच करान ही अपन देखो पौधा की रुपाई करा और बात करा अपन देखो कि सही तरीकों कही है गड्ढा खुदाई करवा को। सही तरीके की बात करा तो सबों में पहले देखो आप औजारों को चयन करना। छोटा बगीचा के लिए आप हाथ वाली फावड़ो या पीछे खुरपी को इस्तेमाल करा। बड़ा स्तर पर या पीछे एक साथ गड्ढा खोदवा के लिए देखो आप अर्थ आर्गर मशीन को इस्तेमाल करा, जिको कही है कि कुछ समय में ही गड्ढा खुदन तैयार हो जावा है। और मिट्टी ने देखो आप अलग करा, गड्ढा खुदाई करती टाइम आप ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वाने एक तरफ और नीचे की जो सख्त और कंकड़ वाली जो मिट्टी है वाने दूसरी तरफ रखा। गड्ढा तैयार करते टाइम अपन ने कुछ बातों को भी ध्यान रखना चाहे वैसा तो गड्ढा को आकार चौकोर बनो चाहे गोल गड्ढा की अपेक्षा देखो चौकोर गड्ढो जो है पौधे की जड़ा के किनारा न पकड़ और आसानियों बाहर की ओर विकसित हो जावा है। और गड्ढा की जो जांच है गड्ढा खोदबा के बाद आप की जांच कर लवा, एक बार आप में पानी भर देवा, अगर पानी कुछ घंटा में सूख जावे तो अपन पतो लग जावे कि मिट्टी में जल निकासी अच्छी तरीकों वेरी सा। तो ये कुछ बातें हैं।

बैंक बगीचा अपने गर्मी को टेम है, बगीचा लगाबा को सही, गड्ढा खोदबा को सही समय है। जैसे यानी अगर ये टेम अपन किसान भाई गर्मी में गड्ढा खोदन तैयार कर ले तो बरसात वेतन देखो वहाँ में आप पौधा लगा सका हाँ, और वह पौधा अच्छा विकसित रहे वैसा। तो अपना यो महत्वपूर्ण काम ई टेम करना है कि बगीचा के लिए अपने गड्ढा ई टेम तैयार कर छोड़ देना है। तो किसान भाई यो काम अपन करना है। और अब देखो मनोरंजन की बारी है, तो सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

0: Akashwani at 90.
1: لوسا کسان بھائی پیارسو لیونگی تو اپن سنیں سیما مصرا کی آواز میں. اور اب دیکھو بات کراں آپاں بکری پالن کا آدھونک طریقہ اور یہ جانکاری لینا رہے آپاں کے ڈاکٹر مکیش چند جی شرما اور یاکم بات چیت کریا ہے دیویندر جی پالیوال. تو میل بیٹن سنا.
2: साथियों नमस्कार. आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा साहब. आप प्रभारी अधिकारी हैं पशु विज्ञान केंद्र भोजुंदा के अंदर और इनसे हम बातचीत करेंगे कि बकरी पालन के आधुनिक तरीके हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं. डॉक्टर मुकेश चंद्र जी शर्मा साहब कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत.
3: नमस्कार साहब आप सभी को.
2: मुकेश चंद्र जी शर्मा साहब आप प्रभारी अधिकारी हैं पशु विज्ञान केंद्र भोजुंदा में और बकरी पालन के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं जानकार हैं और काफी अच्छी नस्लें आपने यहाँ पर पाल रखी है. हमारे जिले के बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ आय के अन्य संसाधन भी तैयार करना चाहते हैं. ऐसे में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता अगर कोई व्यवसाय

0: यदि लगता है तो वो बकरी पालन का है। आप इसके संबंध में हमारे पशुपालक भाइयों को क्या जानकारी देना चाहिए?
1: देखो सर, जलवायु परिवर्तन के कारण आज टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उससे पशुपालन और कृषि पे कई तरह से प्रभावित होता है। और एक पशुपालन और बकरी पालन एक ऐसा साधन है जिसको अपना पर अपने जो पशुपालक भाई है चित्तौड़ जिले के, वो इससे अपना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और बकरी ऐसा जानवर है कि वो कठिन परिस्थिति के अंदर भी रह के उत्पादन दे सकती है।
0: बकरी पालन करने वाले जो हमारे पशुपालक भाई हैं, क्योंकि देखो इधर मारवाड़ साइड से बहुत पशुपालक भाई आते हैं जो ऊंट लेके आते हैं, भेड़ लेके आते हैं और बकरियां लेके आते हैं। हमारे जिले के लिए अगर कोई किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको जरूरत पड़ती है, क्योंकि नस्ल बहुत महत्व रखती है।
1: नस्ल के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उससे पहले जो बकरी पालन अपन कर रहे हैं तो उसको बकरी पालन का आज के समय में दिनों दिन क्रेज बढ़ता जा रहा
0: जी।
1: उसका कारण है, एक तो सबसे कम खर्चे में बकरी पालन कर सकता है
0: जी,
1: और दूसरा जो लघु किसान है वो भी इसको पाल सकता है, और एक तीसरा है एक जो महिला है तो वो भी इसको अपना के बकरी पालन को लेकर अच्छी आय कमा सकती है, और कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर बकरी रह के भी अपना कर सकती है। बकरी पालन अपन करते हैं तो उसके लिए पांच चीजें आवश्यक होती है
0: जी।
1: सबसे पहली चीज होती है बकरी की नस्ल
0: जी,
1: दूसरा उसका आहार, और तीसरा उसका आवास, और चौथी चीज स्वास्थ्य, और पांचवी चीज बाजार व्यवस्था। इन पांचों चीजों पे बकरी पालन यदि ध्यान दे तो अच्छा कमा सकता है। और इसमें भी पांचों फैक्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान उसे पशु आहार पे देना पड़ेगा, क्योंकि 70% जो खर्चा है पशु आहार पे होता है, और इसको यदि बकरी पालक ने कंट्रोल कर लिया तो पूरा अच्छा प्रॉफिट मिल

0: है। और जैसे कि आपने बताया कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है पशु की नस्ल या बकरी की नस्ल,
1: जी
0: वो बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तो पशुओं की बकरी की नस्ल के लिए अपने राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 4-5 नस्ल की बकरियां हैं जो प्रसिद्ध है। सबसे पहली बकरी है सिरोही, दूसरी है सोजत, तीसरी है मारवाड़ी, चौथी है जखराना, और उसके बाद में भी गुजरी और तोतापुरी नस्ल भी अब डेवलप हो रही है। तो अपन चित्तौड़ जिले की बात करें तो चित्तौड़ जिले के लिए जो जो बकरी की नस्ल है, वैसे सिरोही नस्ल है अपने मेवाड़ एरिया की है। सिरोही आपने नाम इसका सिरोही है, तो सिरोही जिले में आपने भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पे पाली है, लेकिन इस पे अपने पशुपालकों ने, मेवाड़ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये नस्ल अभी आपके राजसमंद जिले में देवगढ़ और अजमेर जिले में, नागौर जिले में परवस है, उन लोगों ने बड़ा ध्यान दिया, आज वो उस सिरोही नस्ल से बहुत कुछ अच्छा कमा के खा रहे हैं। और दूसरी नस्ल अपने जो चित्तौड़ जिले के लिए वो अब लोगों को पाल रहे, जो पाली जोधपुर जिले में पाली जाती है सोजत, और दो नस्ल चित्तौड़ जिले के लिए और चित्तौड़ के वातावरण के लिए सबसे बढ़िया नस्ल है जिसमें किसान उसको पाल के अच्छा कर सकते हैं।
1: सोजत नस्ल और सिरोही नस्ल की दो तरीके की जो बकरियां हैं वो प्रमुख रूप से हमारे किसान भाई पाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई बार पशुपालक भाई इतना सक्षम नहीं होता है कि वो सिरोही नस्ल की बकरियां खरीद सके, अगर उसके पास में देसी नस्ल है तो क्या वो देसी नस्ल से एक उन्नत नस्ल प्राप्त कर सकता है?
0: बिल्कुल कर सकता है। देखो आज के समय में आप देखा जाए तो सिरोही नस्ल अपने इस जिले में बची नहीं है, और बची है तो वहाँ पे है कि आप पे देवगढ़ और अजमेर में पर्वतसर एरिया में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आज की तारीख में कम से कम आप बकरी लेने जाओगे 15,000-20,000 से कम बकरी नहीं है
1: जी।
0: और उसको वहां से लाके यहाँ पालना बड़ा टेढ़ा काम है, वहां से ले भी आओगे तो बकरी उसके वातावरण में पली हो, यहाँ पे पालते हैं तो जरूरी नहीं है वो रजे
1: जी।
0: तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन्नत नस्ल का बीजू बकरा से आप पाले, और बीजू बकरा आपको अपने पशुधन अनुसंधान केंद्र भोजिंदा पे सिरोही नस्ल का फार्म है तो वहां पे 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का सिरोही नस्ल का बकरा 1 से 1.5 साल का मिल सकता है। और उस बकरे को खरीद के आप अपनी जो देसी बकरियां उनसे आप बकरियों को प्रजनन कराएं, और प्रजनन कराएंगे तो 2-3 साल के अंदर रेगुलर उसी नस्ल के बकरे से यदि आप प्रजनन कराते रहोगे तो 3 साल के अंदर वो अच्छी नस्ल आपको पैदा हो जाएगी और सस्ते में पड़ेगी। तो ये सबसे बढ़िया एक नस्ल सुधार का तरीका है कि अच्छे नस्ल का बकरा आप अपनी देसी बकरियों को उससे प्रजनन कराओ और अच्छी नस्ल के बच्ची प्राप्त करो।
1: जी बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब की, भाई आपके भोजुंदा फार्म के ऊपर उन्नत नस्ल के बकरे उपलब्ध हैं। अगर कोई पशुपालक भाई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये डॉक्टर साहब कि अगर कोई बकरी पालक है जिसके पास 3 या 4 बकरी है, बकरा खरीदने की उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो क्या वो अपने बकरी का प्रजनन आपके वहाँ केंद्र पर लाकर करवा सकता है?
0: हाँ, जो बकरा नहीं खरीद सकता, और क्योंकि बकरा वही खरीद सकता है जिसके पास में 30 से 40 बकरी हो गए, तो वो बकरा खरीद कर उसका बकरा पोसा जाएगा, और जिसके 3-4 बकरी है तो उसको बकरा नहीं पोसाएगा। उसके लिए पशुधन अनुसंधान केंद्र भोजिंदा में एक व्यवस्था कर रखी है, पहले हमने निशुल्क कर रखी, उसके बाद में 10 रुपए थी, उसके बाद में 20 रुपए। तो पशुपालक सुबह या शाम, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक यदि जो बकरी पाली आ रही है, हीट में आ रही है, तो उसको लाके अपने सिरोही नस्ल के बकरे से गैबिंग करा सकता है, प्रजनन कराता है, और उससे उन्नत नस्ल प्राप्त कर सकता है
1: जी,
0: है ना। तो एक तो ये तरीका है, और यदि वो दूर का किसान, आसपास के किसान तो इससे फायदा उठा लेंगे, और चित्तौड़ जिले को दूर का किसान है तो यदि एक किसान जिसके 25-30 बकरी है वो अपने यहाँ से नस्ल ले जाएगा, बकरा ले जाए, और वो भी दूसरे किसानों को पैसे पे प्रजनन करा सकता है 20 रुपए लेके, और उसको अपने दूसरे जिसके 3-4 बकरी है उससे भी प्रजनन करा सकता है, तो इससे उन्नत नस्ल का जानवर आपको मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने बोला है कि बकरियों के अंदर रोग बहुत कम आते, एरिया के हिसाब से अच्छी खासी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कई बार बकरियों में अचानक से बहुत सारे रोग आते हैं, कौन से मौसम में आते हैं और इसकी पहचान पशुपालक भाई किस तरीके से करें?
0: देखो बकरियों में मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वो एक तो मुंह पका खुरपका की होती है, एक बीमारी होती है गलगोटू की, और एक बीमारी होती है PPR कहते हैं उसे, वो बीमारी होती है। तो आप किसी भी चीज का इलाज करो, उससे बढ़िया आप उसकी रोकथाम कर लो
1: जी,
0: तो वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सभी पशुपालकों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बकरियों का साल में 3 बार मौसम बदलता है तो उसमें टीकाकरण होता है, तो उसमें अपनी बकरियों के PPR, गलगोटू के और मुंह पका खुरपका के टीके लगवा सकते हैं, और ये जो टीके हैं पशुपालन विभाग की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध है
1: जी।
0: तो आप पशुपालन विभाग में संपर्क करोगे तो जहाँ भी पास का हॉस्पिटल है आप डॉक्टर से मिलोगे तो आपको वो टीके लगा देंगे, बीमारी नहीं होगी। और नहीं भी है तो बाजार में भी वैक्सीन उपलब्ध है, जो एक बकरी पे साल भर का मुश्किल से 40-50 रुपए खर्चा आता है, और 40-50 रुपए में आप साल भर तक उस बकरी का इंश्योरेंस कर सकते हैं एक तरह से
1: जी।
0: और ये ज्यादातर जो टीके हैं वो बरसात से पहले

0: रहते हैं। अभी जो मई जून का महीना उसमें लगाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा उसी में रहता है। तो सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है वो बरसात के दिनों में फैलती है
1: जी।
0: तो बरसात से पहले टीका लगाओ, एक बरसात के बाद में टीका जो सर्दियों में लगता है वो लगाओ, और एक होली के आसपास तीन टीके लगते हैं
1: जी। तो ये बकरियों के लिए टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, चर्चा अपन कर रहे हैं कि भाई बकरी पालन के लिए अपने को आधुनिक तरीके, तो ये तो जैसे उसके स्वास्थ्य की बात हो गई, साल में तीन बार उनको टीके लगवाने, सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका आवास कैसा हो, उसको आहार क्या दिया जाए ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे और समय पर वो प्रजनन के लिए योग्य बन सके।
0: देखो, सबसे ज्यादा खर्चा होता है बकरी के आहार पे, तो बकरी के लिए सबसे अच्छा भोजन है पेड़ की पत्तियां
1: जी।
0: और पेड़ की पत्तियों में भी यदि खेजड़ी की पत्ती मिल जाए, अपने बेर की पत्ती मिल जाए, और तीसरा उसके सेंजना की पत्ती मिल जाए, अरू की पत्ती मिल जाए, और देसी बबूल की, ये सबसे बढ़िया पत्तियां ही उसको प्रोटीन मिलता है, उससे अच्छी ग्रोथ आती है
1: जी।
0: दूसरी चीज हरे चारे के रूप में उसे रिचका बरसीम ये मिल जाए वो होता है। एक बकरी को 300 ग्राम से लेकर आधी किलो दाना रोज का मिल जाए तो बहुत होती
1: जी,
0: क्यों बकरी को बहुत ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए
1: जी।
0: और तीसरा है बकरी का सूखा चारा, यदि बकरी के पत्ते खा रही है और जंगल में चढ़ने जा रही है तो सूखे चारे खिलाने की आवश्यकता नहीं है। सूखे चारे ही खिलाना है, यदि पेड़ पे पत्तियां नहीं है और चढ़ने को कहीं जगह नहीं है तो अपन सूखा चारा खिला सकते हैं। और सूखे चारे में भी बकरी ज्यादातर फलीदार फसलें होती है उनका सूखा चारा खाती है, बिना फलीदार जैसे गेहूं का भूसा, मक्की, कड़वी ये नहीं खाती है। ज्यादातर बकरी मूंगफली का बगदा है, चने का बगदा है, सोयाबीन का बगदा है, मेथी का यह है, इन चीजों को जो फलीदार जितनी फसलें उनका जो मतलब सूखा चारा होता है उसको ज्यादा प्रिफर करती है, तो वो खिलाना चाहिए। इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा है, और बाकी और कुछ नहीं हो सकता होगा
1: जी।
0: तो ये तो एक बकरी के पशु आहार की बात हो गई। दूसरा है, बकरी को आवास के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: इसको कम से कम खर्चे में जो आवास बन सके, जो आपके पास उपलब्ध है, तो उसमें एक बड़ा शेड बनाया, उसके चारों दिवाली वाली पक्की करा दो, और बाकी इसको बाहर जगह जगह आप पार्टीशन कर दें, जाली से कर दो, वैसे कर दो, तो अलग अलग कैटेगरी के पशु को अलग अलग हो तो आपको फायदा रहेगा। और बकरी के लिए जो बरसात है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, यदि बरसात से आपने बकरी को बचा लिया तो बकरी पूरे साल भर बढ़िया रहेगी
1: जी।
0: और जहां तक कोशिश हो, बकरी को नीचे जो फर्श है वो मुलायम होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। जैसे आप रेत, बालू रेत हो, इस तरह का फर्श होगा तो उसमें आरामदायक रहती है, बकरी अच्छा रहती है, पक्का पसंद नहीं करती है
1: जी।
0: ये आवाज की व्यवस्था है उसके लिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जैसे कोई पशुपालक भाई है जिसको बकरी पालनी है लेकिन जानकारी नहीं है, तो वो अगर बकरी पालन करने से पहले यदि कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करे और क्या आवश्यक दस्तावेजों की उसको जरूरत रहेगी?
0: देखो, बकरी पालन की जानकारी नहीं है तो पशु विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, उनके माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। तो आप उसमें एक पशु विज्ञान केंद्र का एक ग्रुप बना हुआ है, पशु विज्ञान केंद्र का, उस ग्रुप से आप मेरे नंबर पर आप मैसेज दोगे तो मैं उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में मैं समय समय पर पशुपालन, बकरी पालन की जानकारी देता रहता हूँ, और साथ में जब भी एक प्रशिक्षण आयोजित होता है तो उसका भी माध्यम, जो भी किसान आना चाहता है तो प्रशिक्षण में महीने में एक दो प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, एक दिन के भी होते हैं, दो दिन के भी होते हैं, छह दिन के भी होते हैं, और 15 दिन के, तो उसके माध्यम से पूरी उसको जानकारी दी जाती है। तो उसमें पशुपालक यदि ग्रुप में जुड़ा हुआ था उसको टाइम से सूचना मिल जाएगी, उस तरह का बकरी पालन के बारे में जानकारी कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बड़ी मेहनत करता है, बकरियों की बहुत सार संभाल करता है, सुरक्षा के लिए अगर कोई बीमा वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो उसके लिए वो क्या?
0: बीमा के लिए आजकल पशु बीमा योजना है, जो आप पशुपालन विभाग में जाओगे तो काम देने एक योजना है, उसके द्वारा भी आप पशुपालन का बीमा करा सकते हो। उसमें जो भी पशु की कॉस्ट है उसका कुछ परसेंटेज है बीमा के आपको जमा करते हैं, वो सरकार भी जमा कर रही है। और जब भी बीमा करने के बाद में यदि पशु मर जाता है तो उसका पशु जहाँ पे पशु चिकित्सालय है वहां से आपको पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट बनाई पड़ेगी, तो उसका इंश्योरेंस पास हो जाता है। बड़े पशुओं में तो एक पशु का, एक किसान को दो पशु का बीमा मिल जाता है, 40,000 रुपए करीब का बीमा होता है। और बकरियों में भी बीमा है तो उससे भी आप संपर्क करके, पशुपालन विभाग से होता है, इंश्योरेंस कंपनी से बीमा होता है इसका भी
1: जी,
0: और बीमा जरूर कराना चाहिए।
1: चर्चा के अंत में डॉक्टर साहब अपन यही बात करना चाहेंगे कि यदि कोई पशुपालक भाई है और बकरी पालन अगर करता है तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो साल भर के अंदर वो कितना कमा सकता है?
0: देखो, मोटा मोटा अंदाज ये है कि एक बकरी पूरे साल भर में 5-6 हजार रुपए का खर्चा होता है, और एक बकरी से वो 7-8 हजार रुपए कमा सकता है। मतलब खर्चा करने के बाद में इनकम हो जाती है, तो 3-4 हजार रुपए उसको एक साल में एक बकरी से इनकम हो जाती है। यदि उसने 10 बकरी पाल ली तो आप ये मान के चलो कि एक साल में 40-50 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता है खर्चा करने के बाद में
1: जी।

0: की लागत के अलावा भी अगर वो 50,000 रुपए किसान भाई कमा सकता है, और बकरी की यूनिट जो है ऐसी यूनिट है जो कभी कम नहीं पड़ती, हमेशा बढ़ती है, तो आने वाले समय में अगर जैसे एक साल में किसी पशुपालक भाई ने 50,000 रुपए कमा लिए, तो अगले 5 साल में हो सकता है वो 2 से 2.5 लाख रुपए
1: बिल्कुल कमा सकता है
0: सारा खर्चा निकाल के, और इसमें लागत बहुत कम आती है,
1: कम खर्चे में पल सकती है बकरी
0: जी। तो ये हमारे पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है यदि वो खेती के साथ में अगर बकरी पालन भी करता है तो। डॉक्टर साहब, हमारे पशुपालक भाइयों को बकरी पालन के आधुनिक तरीकों के बारे में आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
2: लोसा किसान भैया डॉक्टर मुकेश चंद जी शर्मा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थी बकरी पालन का आधुनिक तरीका। और किसान भैया, अब बात करें अपन, देखो कि बरसात को मौसम आबावड़ो है और बावड़ो ई टाइम पड़ रही है गर्मी, तो अपन बात करें कि जल संरक्षण, जल संरक्षण देखो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और ई टाइम जो है अपने जल संरक्षण का उपाय अपन करना है। जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मानसून आबों पहली वर्षा जल संचयन की रूपरेखा अपन तैयार कर लेवा, भूजल स्तर ने गिरमो में अपन बचानो है और पानी की बर्बादी अपन ने रोकनी है। तो देखो जल संरक्षण के लिए ई टाइम अपन अपना जो आस पास जो कुआ बावड़ी, पुराना कुआ बावड़ी है, तालाब है, या कि साफ सफाई अपन एक जन जागरूकता बना और अपन यहाँ की साफ सफाई करनी है, और यहाँ को गहरीकरण को भी अपन ने काम करना है ताकि बरसात को जल यहाँ में संचित हो जावे, इकट्ठो हो जावे। और देखो अपन ने भूमिगत जल स्तर ने भी अपन ने बढ़ाना है, वाटर हार्वेस्टिंग को अपन ने काम करना है, और ई टाइम देखो अपन ऐसा काम करा जिमो अपन बरसात को जो जल है वो संचित वर्ष भर अपन के लिए संचित रहे, तो और दैनिक जीवन में भी अपन देखो पानी की कम को बर्बादी करा। तो जल संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये बात ने ध्यान रखता तक अपन ने ये काम जरूर करना है। और अब देखो बात करें किसान भाई की गर्मी की, तो गर्मी में देखो लू खूब पड़ रही है, लू चल रही है, तो लू मुँह बचवा को भी अपन ने उपाय पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए अपन ने देखो हाइड्रेट रहना है, शरीर में पानी की कमी नहीं पा देनी है, पर्याप्त पानी अपन पीवा, प्यास न लागब पे भी अपन देखो हर घंटा में कम कम एक गिलास पानी जरूर पीना चाहे, और ई टाइम अपन देखो तरल पदार्थों को सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे। पानी के अलावा देखो अपन नींबू पानी है, छाछ है, नारियल पानी है और बेल को शरबत है, ये अगर आप पीवा तो देखो लू आप बस सका। और फल की बात करें किसान भाई, तो ई टाइम देखो तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी जैसा पानी वाला जो है जिनमें पानी की मात्रा भरपूर वह है वहाँ को आप आहार लेवा। और देखो ई टाइम आप ध्यान रखा कि खाली पेट आप गर्मू बिल्कुल बाने न निकला, और ई टाइम देखो अल्कोहल को सेवन आप न करा, ठीक है ना, और बंद गाड़ी के महीने भी आपने न बैठना है। कुल मिलान किसान भाई देखो बात ऐसी है कि आपने लूम बचवा का उपाय पूरा पूरा रखना है, काहे कि देखो अगर लूम बेच आप तो देखो अपन खेती बाड़ी का काम काज भी अपन सही कर सका। तो किसान भाई ये तो बातचीत हुई है, और अब देखो मनोरंजन की बारी है, तो सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 34%, हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा। काल का मौसम की अगर बात करें किसान भाई, तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 43%, हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। और देखो किसान भाई, कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी है, मनोरंजन भी है, पर अब अपना कार्यक्रम को वेग्यो है टेम पूरा, तो चालना काले पचमला अणि अशक साथ आप सब लोगों ने मारी पूर्ण भाई की ओर हूँ घना घना राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार।

बीते दिनों की याद का एक हंसी कारवा है संगीत, जो सीधे रूह में उतर जाए वो दास्ता है संगीत। आज सजी है महफिल उस फनकार की याद में, जिनके दम से सदियों तक अमर रहेगा ये संगीत। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी पूजा जोशी का सादर नमस्कार। वक्त हो गया है फिल्म संगीत के अंतर्गत आपके पसंदीदा विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार का, एक ऐसा सफर जहां हर शुक्रवार हम किसी एक महान कलाकार की बात करते हैं। और आज के कलाकार है हिंदी सिनेमा के गीत संगीत के स्वर्ण युग के सारथी, सुरों के भीष्म पितामह अनिल बिस्वास जी, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री आदर और प्यार से अनिल दा कहती थी। पूर्वी बंगाल के बारिसाल में 7 जुलाई सन 1914 में जन्मे अनिल दा स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा भी रहे और उनका संगीत आज हमारी एक अमूल्य विरासत बन गया है। आइए इस सुरीले सफर का आगाज करते हैं। साल 1943 की ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत के उस ऐतिहासिक गीत से, जिसमें देश की आजादी से 4 साल पहले ही गली गली में क्रांति की मशाल जला दी थी। बड़नगर मध्य प्रदेश के महान गीतकार कवि प्रदीप के लिखे और अनिल दा के जोशीले संगीत से सजे इस गीत को सुनकर आज भी रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है। सुनिए अमीर बाई कर्नटकी और खान मस्ताना की संयुक्त आवाजों में यह कालजयी तराना।

क्या जोश, क्या धुन और क्या कमाल की शब्द रचना। वाकई देश भक्तों के दिलों को झकझोर देने वाला संगीत था यह। श्रोताओं, अनिल दा ही वो जादूगर संगीतकार है जिन्होंने तलत महमूद साहब को यह विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज का कंपन, उनकी वो लर्जिश ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। अनिल दा तो तलत साहब की इस मखमली आवाज पर फिदा थे और इसे रेशम सी आवाज कहते थे। साल 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने तलत साहब से पहली बार गाना गवाया और यह इतिहास बन गया। आइए सुनते हैं वही लाजवाब नगमा।

इस आवाज की मिठास सीधे रूह में उतर जाती है श्रोताओं। अनिल दास सिर्फ गंभीर गीत ही नहीं बनाते थे, बल्कि जब वो लोक रंग बिखेरते थे तो पूरा माहौल चुलबुला हो उठता था। आइए अब चलते हैं साल 1953 की फिल्म बड़ी बहू के पनघट पर, जहां गूंजने जा रही है सुरिंदर कौर और उनके साथियों की खनकती आवाजें और अनिल दा का बेजोड़ संगीत। सुनिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल और आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार जो कि है अनिल बिस्वास। श्रोताओं, स्वयं सुर कोकिला लता मंगेशकर जी बड़े सम्मान के साथ अनिल दा का जिक्र करती है। लता जी ने खुद स्वीकार किया था कि अनिल दा ने ही उन्हें समझाया था कि गाते समय आवाज में परिवर्तन लाए बगैर श्वास कैसे लेना चाहिए, जो कि आवाज और श्वास प्रक्रिया की एक अद्भुत योग कला है। अनिल दा उन्हें प्यार से लती के पुकारते थे। आइए अनिल दा के संगीत निर्देशन में लता जी की आवाज से सजा यह बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं, जिसके बोल है इंतजार और अभी।

वाह क्या बात है, लता जी की शुद्ध सात्विक आवाज और अनिल दा का बेजोड़ संगीत, मानो सुरों की गंगा बह रही हो। श्रोताओं, अनिल दा के धुनों में जो ठहराव और सादगी थी, उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। फिल्म तराना का एक ऐसा गीत जो जब भी कानों में पड़ता है, आंखों के सामने दिलीप कुमार और मधुबाला की वो मासूमियत तैर जाती है। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों से सजा यह गीत सुनिए और खो जाइए इसके मीठे दर्द में।

सीने में सुलगते हैं अरमां, आंखों में उदासी छाई है। सादगी से भरा संगीत क्या जादू कर सकता है, यह अनिल दा से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज जो मुकेशियाना अंदाज हम सुनते हैं और जिस पर पूरी दुनिया झूमती है, उसे निखारने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे अनिल दा ही थे। उन्होंने ही मुकेश जी को KL सहगल साहब के प्रभाव से मुक्त कराया और उन्हें वो खास मुकेशियाना शैली प्रदान की। साल 1945 की फिल्म पहली नजर से मुकेश जी का गाया यह वो पहला ऐतिहासिक गाना है जिसने उनके शानदार करियर की शुरुआत की। आइए सुनते हैं।

Bye. मुकेश जी की आवाज का यह दर्द सीधे दिल के पार निकल जाता है। श्रोताओं, अनिल दार के दौर में नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र और एस डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की मौजूदगी के बावजूद अनिल दा का स्थान एक मार्गदर्शक का था। वो सदैव कमल की भांति रहकर सबका मार्गदर्शन करते थे। सी रामचंद्र जी तो खुद को अनिल दा का शिष्य मानते थे। घड़ी की सुइयां बड़ी बेरहम होती है श्रोताओं, वे इशारा कर रही है कि आज के सफर को समेटने का समय आ रहा है। साल 1986 में संगीत नाटक अकादमी और बाद में लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित अनिल दा भले ही 31 मई सन 2003 को इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपनी अमर धुनों के जरिए वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आइए आज के इस सफर को विराम देते हैं लता जी के इस बेहद लोकप्रिय और संजीदा गीत के साथ, फिल्म जलती निशानी से।

चले गए वो मगर अपनी यादें छोड़ गए, फिजा में गूंजती सुरों की तराने छोड़ गए। मिट नहीं सकती कभी अनिल दा आपकी धुने, आप सदियों के लिए संगीत के खजाने छोड़ गए। इसके साथ ही अपनी दोस्त पूजा जोशी को दीजिए इजाजत। अगले शुक्रवार ठीक शाम 7:30 बजे फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार के अगले अंक में फिर सजेगी एक नई महफिल किसी और अजीम फनकार के गीतों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल 102.9 MHz पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे अनिल बिस्वास। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं प्रस्तुत कार्यक्रम लोक संगीत। पहली प्रस्तुति सुनते हैं ममता सिंह की आवाज में।

चंचल काबरा की आवाज में श्रोताओं, अभी आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश वंदना शर्मा की आवाज में।

वंदना शर्मा की आवाज में सुने इस लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत की शुरुआत करते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा की मखमली आवाज में इस अमर रचना के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए अब रुख करते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सुनिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पावन कंठ से सजी यह सुंदर रचना।

जगजीत सिंह की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे, और अब जब दिल भक्ति के रंग में डूबा है तो सुनिए चित्रा सिंह के स्वर में यह एक और बेहद खूबसूरत रचना।

अनूप जलोटा के स्वर में सुनी इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विकेट लेकर 11 रन दिया है उन्होंने 3 ओवर में। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर

0: ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बागेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी मध्य पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान

राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार

0: Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। अब रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था, या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा आया।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको

0: लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत जरूरी था।
1: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
0: उससे पहले हमने एक नाटक किया था, एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र थे, जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी, और वो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें 6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो, तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था, अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद है।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।